लोगन स्यों मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल स्यों मौला, अलिप्त रहूं जैसे जल में कौला। मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभु अपना धरता। दीस आवत है बहुत भियाला, सगल चरण की एहो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। पूरा

मैं बंदा बेखरीद सच्चा है मेरा, मैं बंदा बेखरीद सच्चा है मेरा, जो पिंड सब सब कुछ है तेरा, माने ने माने तू तने तेरा परवासा, बिन साचे अंते को है तो जानू काचा।

चतुर दिन दूजा और ना कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो क्या कहिए किस आस सुनाइए जो कहना तो प्रभु जी पास सब किचो किता तेरा वरते सदा सदा तेरी आस जी दे वड़ियाई ता तेरी वड़ियाई।

जो तो करे करावे कमी हा मसलत परवा चरण शरण हम अनाथ ना फरकनी अपनी कृपा करे चल कमल नानक आरा दे किस दिन आम के पर परमेश्वर गत मरायण तन गोपाल साखी।

मेरे मालिक मैं तेरे नाल जुड़ जा, तेरी गलवकड़ी विच आ जा, तेरे विच समा जावा, मन करके तन करके, अधूरा नहीं, केवल तन करके जुड़िया होवा, मन ना जुड़िया होवे ऐसा भी नहीं। ते जे मैं ऐसे बहाने करा कि मेरा तो मन जुड़िया है, तन की केड़ी लोड़, प्यार तो इस तरह कोई नहीं होता। जिन्होंने प्यार किया है महाराज उन्होंने गल करते, गुरसिखां दी गल करते ने, भगतां दी गल करते ने, संतां दी गल करते ने जिन्होंने प्यार किया। ते प्यार किया तो फिर भरपूर किया, प्यार च अधूरेपन की गल हो। जब भरपूर प्यार करना है तो फिर तनो मनो प्यार करना। तुसां वेखिया सुहागना पति नाल मिठा बोलदियां ने ते पति की प्रसन्नता वास्ते तरह तरह के शिंगार भी करदियां, पति की प्रसन्नता वास्ते चंगे पकवान भी पकाउंदियां। पति थोड़ी देर पछड़ जावे घर आउण तों पौड़ियां होईयां फिरदियां रहिंदियां ने, मन विच वी प्यार है। शरीर करके भी पति की प्रसन्नता लैण वास्ते प्रयत्नशील ने। ते जे कोई कहे मैं तां अंदरों प्यार करदा, बाहरले प्यार की कहड़ी लोड़ है, घर बैठा रहे, गुरद्वारे आउण दी थां नहीं, गुंजाइश नहीं, समां नहीं, अधूरा प्यार लैके बैठा होगा बल तो होना ही कोई। एक ऐसा भी हो सकता है जिहड़ा गुरुद्वारे आके बैठ गए, मन इत्थे नहीं पिया जुड़दा, मन कितने संतान ते रह गया है, मन कितने मकान ते रह गया है, मन कितने दुकान ते रह गया है, मन कितने भटकदा रह गया, शरीर करके इत्थे बैठा रह गया है, अधूरी हाजरी लगेगी। और वह बड़ी खास कथा है जिहड़ी साहिब कलगीधर पातशाह दे द्वारपाल दो गुरसिखां विचों एक चला गया सी। रात नूं रासधारियां दी रास वेखण चला गया सी। सवेरे आया ते महाराज ने पुछ लिया क्यों भाई रात हाजिर रहे सो, बड़ा परेशान होया। महाराज ने पुछिया क्यों भाई रात पहरे ते हाजिर रहे सो, बोल पिया, कहन लगा महाराज मैं गैर हाजिर हो गया सी, किथे गया सै, कहिंदा जी रास वेखण चला गया सी। अनाल दे पिंड रासधारीए बड़े गुणी आए सन, बड़ा चिर हो गया सी, जद तो तुहाडे चरणां विच आया इस पासे कदे गए नहीं सन, चला गया सा, गलती हो गई। साहब कहन लगे चंगा कीता जी, गया है चंगा कीता है, तू दस की वेखिया ते की सुनिया। कहन लगा महाराज चंगा कोई नहीं कीता, मैं बहुत माड़ा कीता, एक तां गैर हाजरी कीती, सेवा तो गैर हाजरी की, एक मैं गलत पासे गया, चंगा तो मैं कोई नहीं कीता। महाराज कहन लगे चंगा फिर दस वेखिया की ते सुनिया की, सिर नीवा करके खलोरिया, खिमा मंगी। महाराज ने फिर पूछिया वेखिया की ते सुनिया की, कहिंदा महाराज ना कुछ वेखिया ते ना सुनिया। क्यों भाई ऐसा किवें हो गया? कहन लगा महाराज गया तो बड़ा धा के सा, ते भीड़ नू चीरदा सिरे ते जा पहुंचिया, पर उत्थे कुछ कहानी होर तरह हो गई। लोग रासधारियां नू छड़ के मेरे वल वेखन लग पए, और कुछ लोग गल्लां भी करन लग पए, गुरु का सिख इत्थे किधर फिरदा, वेस तो गुरु का सिख जापदा, इहदी दोहरी दस्तार, इहदी श्री साहब, इहदे रहनी बहनी दे सारे लक्षण पूर्ण गुरसिखां वाले ने, इत्थे की करना है? ते जे इत्थे आया रात इत्थे जागदा रहा, अमृत वेले किवें जागेगा? जे अमृत वेले ना जागिया तो नितनेम किवें करेगा? नितनेम ना करेगा तो फिर सिख किवें होया? फिर तो कोई बरूपिया ही होना। जिवें असीं रासधारीए तरह तरह के रूप धारण करके ते लोकां दा जी परचावा पै करने आ, किते वी तां नहीं सिख दा रूप धारण करके अपना या लोकां दा जी परचावा करदा फिरदा होवे। कहिंदा महाराज उन्होंने गल्लां कीतियां ते मेरे कोल खलोना औखा हो गया, मैं पिछा नूं निकलना चाहिया पर निकलन नहीं दिता उन्होंने, मैं उत्थे ही सिर गोडियां च दे के बैठ गया। महाराज ना मैं कुछ सुनिया ते ना कुछ वेखिया है, तुहाडे चरणां दा ध्यान करके पछताउंदा रहा। साहब कहन लगे तू फिर कहदा गैर हाजिर होया, तेरा मन तां इत्थे रहा ना। दूजे नूं कहन लगे तू तां हाजिर रहा कि महाराज मैं तां किधरे कदम नहीं हिलिया। साहब कहन लगे कदम तां तेरे शरीर दे नहीं हिले, मन करके भी हाजिर रहे हैं, गड़बड़ा गया। कहन लगा महाराज मन तां मेरा इहदे मगर तुर गया सी, मन तां मेरा रासधारियां वाले टिकाणे ते पहुंच गया सी, उन्हां दीआं आवाज़ां मेरे कन्नां च आउंदियां रहियां ते मैं रचना रच के इस तरह नचदे होणगे, इस तरह फेरे लैंदे रहे होणगे, मैं उह तमाशा अखां दे सामने बना के वेखदा रहा। साहब कहन लगे इह बंदा हाजिर सी शरीर करके, लेकिन मन करके गैर हाजिर सी, बड़ा पछतावा लगा। इहदे नाल तां जाण वाला ही चंगा रहा। महाराज कहन लगे नहीं, तुसां दोवां चंगा नहीं कीता, जिहड़ा मेरे सरूप नूं गलत जगह ते लै गया है इहने वी मेरे नाल द्रोह कमाया।
मन करके हाजिर रहा है लेकिन शरीर मेरा स्वरूप तो उथे लै गया है जेड़ा शरीर करके इथे रहा है मन करके उथे फिरदा रहा है मैनू ये अधूरे प्रेमी दोवे ही प्रवान ने मैनू ये अधूरी प्रीत अधूरी सेवा अधूरी हाजरी दोवे की प्रवान नहीं एक शरीर करके गैर हाजिर फिर एक मन करके गैर हाजिर फिर मैनू तो दोवे तरह हाजिर चाहिए और कई ऐसा करते ने इथों तक मैं खिमा करना एक बार ऐसा भी होया किसी प्रेमी ने क्या गुरमुखा केसा की बेदबी ना कर कहिंदा जी प्यार तो अंदरों चाहिए केसा नाल की होंदा कमाल जे तेरे अंदर प्यार होंदा ते जिस दे केस ने जे कलगीधर दे चरणा नाल तेरा प्यार है ते ओदी मोहर दा तू एवें बेड़ा गर्क करदा एवें ही ओदी मोहर नूं कैंची धरदा नहीं हो सकदा सी तैनूं गुरु नाल प्यार कोई नहीं होना अंदर भी कोई नहीं होना अंदर दा बहाना ना कर उन्हें एक बड़ी अजीब गल कही कह लगा जी आ जिन्हें फिरते ने दाड़ियां वाले केसा वाले मैं एक गल पूछना मैं दसो कि पांच ककार ने मैं बिल्कुल ठीक ने कहिंदा केस कंघा कड़ा कशहरा ते किरपान मैं बिल्कुल ठीक है कहिंदा विखाओ मैनू किन्या ने बाकी दे चार रखे हुए 20% मैं उन्हां नालों फालतू हाँ और कोई खास गल नहीं वो जिन्हां ने केस रखे हुए ने कंघे की बजाय वो अंगीठी दे पई कंघी वरते ने कंघा कोई नहीं केसा विच रखते किरपान कोई नहीं पाते कशहरे की बजाय कुटनिया जी पाई फिरते ने कच्चिया जिहा जिहड़ियां बच्चियां नूं पाई दियां ने ओह जिहियां वड्डे पाई फिरते ने एक बड़ी गल होगी तो बहुतिया ने कड़ा पाया होगा बाकी तो किनिया रहता तो वह खैर हाजिर ने मैं उन्हें एक बेनती की मैं क्या गुरमुखा एक गल का ध्यान रखी जितना चिर केस नहीं रखता सिखी शुरू नहीं होती एक रुख है ना उहदे पांच हिस्से ने जड़ मुढ़ टाण पत्ते ते फुल उही फुल जिहड़ा फल दा रूप धारण करता है उही फुल जिसने कल फल बन के इसे रुख का मुड़ के बी बन जाना पांच हिस्से ने रुख दे कह लगा जी हां हुण तू यह दस एक बंदे ने फुल झाड़ दिते दूजे ने पत्ते ते टाणियां छांग दित्तियां तीजे ने मुढ़ कट दिता है लेकिन तू देख रहा उन्हें जड़ा विचों एक नवा रुख कल फिर फुट खलोवे कहिंदा जी ये तो है मैं कहते जे रुख उत्ते खड़ा रहे उत्ते सारा रुख खड़ा रहे थल्यों जड़ा कट देवे फिर कहिंदा जी फिर तो कोई नहीं बचन लगा मैं क्या सिखी दियां जड़ां केस ने जद सरूप ही नहीं तो सिखी शुरू नहीं होती सिखी दे रुख दियां जड़ां केस ने और एक गल का ध्यान रखना वारने जाइए साहब कलगीधर पातशाह तो किड्डे विज्ञानक सन जिन्होंने बंदे दे अधूरेपन नूं डक्का लाया कि नहीं तू अधूरा ना हो कुदरत ने तैनू पूरा बनाया है इस पूरेपन च अधूरापन पैदा ना कर आप जी नूं पता होवे केस मनुख दा ओ अंग ने जिन्हां दे बारे कहण नूं कोई कह देवे कि फंक्शन है इसकी की करते की ने केस लेकिन अज वर्ल्ड हैल्थ इंस्टीट्यूट जिहड़ियां खोजां च लगी है उन्हां विच एक खोज है टैलीपैथी ध्यान देना दिमाग दियां लहरां सोचां दियां लहरां जो मैं सोचदा वह दूजे के दिमाग तक ट्रांसमिट होंदियां ने बल्कि सारे वातावरण च निकलदियां ने ट्यून होया या दूसरा मन उस नूं प्रवान करदा दिमाग दियां लहरां नूं जिहड़े लोग प्रवान करना जाणदे ने एकाग्रता नाल उन्हां नूं टैलीपैथ कहिंदे दिमागी तौर ते ही बिना कुछ बोलिया अपने दिमाग दियां लहरां नाल ही मरीजां दे दिमाग दे विच झटके दे के वह इलाज भी करदे घालना वाले लोगों की गल है पुराने समयां तो मनोविज्ञानक यह ढंग बच्चियां नूं पढ़ाउण दे काम भी आउंदा रहा चेलियां नूं सिखाउण दे काम भी आउंदा रहा लेकिन एक प्रश्न पैदा होया असीं सुंघदे आ नक नाल असीं सुणदे आ कन्नां नाल असीं वेखदे आ अखां नाल चखदे आ जीभां नाल ते असीं छो के जिल्द नाल अपने शरीर की स्किन नाल छो के ठंडे तत्ते का पता करदे लेकिन जिहड़ियां दिमाग दियां लहरां जिन्हों सिक्स्थ सेंस कहने आपां छेवीं हिस्स कहने इहदा सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ते सोर्स ऑफ सेप्शन की हो सकता है और तुसीं हैरान होवो कि वह इस नतीजे ते पहुंचे ने कि टैलीपैथी का
ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਬਹੁਤ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਲਦ ਨਾਲ ਰਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਐਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰੋ ਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਓ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੁੱਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਲ ਕੋਈ ਢਾਲ ਹੈ? ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਲ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫੌਰਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਯਾਰੋ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੱਛ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਕਹੇਗਾ ਕੈਸੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਦੇ, ਤੇ ਕਹੀਦਾ ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਰੂਪ, ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਲਹਿਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਜਟਾ ਜੂਟ ਰਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ, ਯਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੇ ਤਸਲੀਮ ਖਮ ਹੈ ਜੋ ਮਿਜ਼ਾਜੇ ਯਾਰ ਮੇ ਆਏ, ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਨਖਰੇ ਕਿਸ ਗੱਲ, ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਬਚੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਰੱਖਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਟੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫੁੱਲ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਚੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ, ਕੋਈ ਸਵਾਦ, ਕੋਈ ਰਸ ਚੱਖਣਾ ਹੈ,

बिन बाजे कैसो नृत्यकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिर

बिन जेवा कहा को बकता, बिन श्रवना कहा को सुनता, बिन नेत्रा कहा को देखे, नाम बिना नर कहीं न लेखे, बिन विद्या कहा को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित, बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी, बिन बस पंच

गोविंद ना भजे अहम बुद्ध माता जन्म जुए ज्यों हारे नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे छापर बांध सवारे प्रण को द्वारे पावक जारे कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन ते डारे ओढ़े वस्त्र का

सत्संग बड़ा मुश्किल रह गया, चोखा मुश्किल, एक गया नहीं जाता। इन्नी तैयारी नहीं की हुई क्योंकि पहली बारी शायद दूजी बारी गाने लगे, तो माली गौड़ा बड़ा मुश्किल आ गया, एदा हुण जान बड़ा विकट ते टेढ़ा जिहा है। आप सुन

प्यार नाल सुनियो की नहीं करदा कोई रचना बांझी रखी जाए, पर कई दफा ऐसिया चीजा बंदिश दे विच आउंदियां गवैशी विच जिसनू बिखड़े टेढ़े ढंग नाल थोड़ा जा गाया जांदा है। ये आम जिन्हें सजना जा भैणा नू ताल सुर दी समझ ना होए तो कई दफा ऐसी बेरसी बेतालापन पैदा होंदा है जिदे नाल चीज दा समुचा रस माणिया जांदा है। सो मैनू इस गल की हार्दिक प्रसन्नता होएगी जे भैणा जा वीर लय सुर दे अंदर बोल सकन ते इस चीज़ नाल बोलन, ते नहीं तो प्यार नाल सरवण करना इस शब्द के विचों बहुत कुछ मिलना है।

जी बदो मुल्ला कहो ने आओ खुदाई जी बदो सो धर्म कर थापो अधर्म कहो कत भाई जी बदो

जे जे देख इस तन में तारे जेड़े अपने तन लोगों नु पसान वाल के अपना तन भेखी बनाउणगे जे जे देख इस तन में तारे ते प्रभ जन किछ कह ना बिचारे समझ लियो सब जन मन माही इत फिर सब अखर आ गया समझ लियो सब जन मन माही दिमन में परमेश्वर नाई जे जे कर्म कर डिम दिखाई तिन पर लोगन मो गत नाही परलोक च उन्हां नूं गति बिल्कुल नहीं मिली जीवित चलत जींदिया होया वह बड़े सुखी रहनगे क्यों के अमीर अपनी माया देके उन्हां नूं सुख देणगे जीवित चलत जगत के काजा स्वांग देख कर पूजत राजा स्वांगन में परमेश्वर नाही स्वांगन में परमेश्वर नाही खोज करे सब ही को काही किथे जी परमेश्वर अपना मन पर मुझे आना जिन्हें अपना मन अपने हाथ च पकड़ लिया पार ब्रह्म को तिने पछाना महाराज भेखी ने उन्हों का की हाल होगा तो उन्होंने चेलिया का की हाल होगा लो फिर हम सारे पढ़ियो

जे जे जाको डिंब दिखावे लोगन मूंड अधिक सुख पावे। लोग कैंची ना मुंडे है ये धर्म की कैंची ना मुनी जांदा लोगन लुटी जांदा। जे जे जाको डिंब दिखावे लोगन मूंड अधिक सुख पावे। नासा मूंद करे प्रणाम। नासा मूंद के नमस्कार करन दिया। नासा मूंद करे प्रणाम। फोकट धर्म ना कौडी काम। ये कुछ हिस्सा राधा स्वामी च है कि इंद्रियां बंद करके ते अंदर कूं कूं सुननी। नासा मूंद करे प्रणाम। फोकट धर्म ना कौडी काम। फोकट धर्म जिते जग करी नरक कुंड पीतर ते परी। हाथ लाए सुर्ग न जाऊ। एक्टिंग करनी अनेक प्रकार की। हाथ लाए सुर्ग न जाऊ। जो मन जीत सक

जे जे बाद करत अहंकार, जे जे बाद बाद झगड़ा अहंकार वाला झगड़ा जिसे होमे वधे, कई बार परमार्थ की विचार करद हो होमे वध जाती, वेख्या ना मैं जित लिया, मेरे सामने कू नहीं सकिया, बोल नहीं सकिया, मेरे सामने ताकत नहीं पई कि दूजी गल कर सके, वेख्या जितिया, कहिंदे उथो रब उथो चला गया, जिसने आ चीज आखी उहदे कोल रब चला गया। जे जे बाद करत अहंकार, तिनते भिन्न रहत करतारा, जान लिया हर जन मन माई, वेद कितेव दिखे हर माई, ए झगड़ा मत करो इत्थे ते रब है ही नहीं, वेद कितेव दिखे हर माई, जान लो हर जन मन माही, आंख मूंद को डिंब दिखावे, अंदर की पदवी कह पावे, आंख मीच मग सूझ न जाई, ऐस दुनिया का रास्ता नहीं दिसता ते अगला कौन वेखेगा, आंख मीच मग सूझ न जाई, ताहे अनंत में

जो था अब है और आगे हुए है। पूछा महाराज तुहाडा गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह साहब जी पूछा गया तुहाडा गुरु कौन है? कहंदे आओ मैं तुहानू अपना गुरु दसा। कोट किंद्र करे जे के जिन्हें करोड़ा इंद्र बनाए ने, कोट के इंद्र करे जे के कई कोट उपिंद्र बनाए खपायो, दानव देव फनिंद तरा तर भूत भविख उपाय मटायो, आज लगे तपसा दिता है शिव ऊ ब्रह्मा किछ पार न पायो। आज तक शिव जी ते ब्रह्मा जिन्हां दा तप करदे ने ते उन्हां दा अंत दा पता नहीं लगा। आज लगे तप साध है शिव ऊ ब्रह्मा किछ पार न पायो, वेदक देव ना भेद लख्यो जे।

जानलेवन ठगियो सब लोगन शीस जटा नख हाथ बढ़ाए जटा बना लिया ते हथां दे नौ बदा ले ते ध्यान ला के बैठ गए लोगों नू ठगण वास्ते ध्यान लगे ठगियो सब लोगन शीस जटा नख हाथ बढ़ाए लाए बिभूत फिरियो मुखी उपर स्वा मल लई लाए बिभूत फिरियो मुखी उपर देव अदेव सबे डहकाए चंगे मारे सारे लुट ले मूर्ख ते स्याने सारे लुट ले इन्हें किसी ने छड़िया ही नहीं तू क्यों धोखा खा गया कहिंदा चंगा भला मैं स्याना सा मेरी माती मारी गई ऐसे चलाक लोग सन लाए बिभूत फिरियो मुखी उपर देव अदेव सबे डहकाए लोभ के लगे फिरियो कर ही कर जोग के नास सबे बिसराए आखो प्यारियो श्रीवा सारे नहीं आख्या सारे गज के आखो श्रीवा एक बार आख्या ते हजारा दा फल मिल गया इसलिए इस सस्ता सौदा फिर कर लो सारे गज के आखो लोभ दा मारिया होया घर घर विच चला गया कि मेरा सत्कार कर मैंने लोग नमस्कार कर पर जोगी नू अपने नियम भुल गए इनू ये नहीं पता कि जोगी बनी किवें दा किवें बनी दा जिवें सिख नू नहीं पता कि सिख किनू कहंदे ते पर लैणा असा राज करेगा खालसा आ की रहे ने कोई बिल्कुल गलत चीज ये इथे मलमा नहीं चल सकेगा ये गलत है साडा योग के न्यास सबे बिसराए जिहड़े योग दे नियम सन योग दे जिहड़े नियम सन ओह इहनू भुल गए अनी पता नहीं कि जोगी कहिंदे किहनू नहीं पर यह मूंह ते सवा ला के जोगी बन के प्यार फिरदा जरूर जिवें इहनू नहीं पता कि सिख किहनू कहिंदे नहीं ते कहिंदा जरूर मैं आपणे आपणे सिख ते बड़े मान च पढ़दा राज करेगा खालसा ज्यों ज्यों पढ़ी जांदा त्यों त्यों खुशी जांदा नुकसान हुंदा जांदा यह क्यों नुकसान हुंदा है यह पढ़न वल पै गया ते प्रैक्टिकल किसे अंदर चीज ना जीवन लियांदा गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ना समझिया सिर पढ़ छड्डिया और पढ़िया भी कवेले कवेले पढ़िया अज पता ही नहीं किस नूं कि राज करेगा खालसा पढ़िया किस वेले जाना है जे 11 बजे भोग पै गया तां भी पढ़िया गया 2 बजे पढ़िया गया 4 बजे पढ़िया गया मृतक ते भी पढ़िया गया सारे पासे पढ़िया गया यह खास नियम हन यह तख्तों नूं जाके पुछो कि राज करेगा खालसा नियम की और फिर अगों खालसे दे अर्थ करे कौन जिहड़ा डंडे खावे वह अर्थ करे क्योंकि तुस अर्थ मन्ने नहीं पर आखे ने गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने पर अज नहीं मैं कहना भाई कभी फिर आवांगे फिर वेखी जाए आखे ने गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने हजूर कहिंदे जोग के न्यास सभे बिसराए इहनू पता ही नहीं कि नियम की हन आ छोटा जिहा नियम गुरु रामदास सच्चे पातशाह लिखिया आए मेरे गुरसिख आए मेरे तू मेरे गुरु के प्यारे सारे आ गए भज के सारे ही आ गए सारे गाउन लग पे सारे सुन लग पे सतगुरु ने आग्या दिती सारी आई संगत जी सारे सारे सिख हो कहिंदे महाराज सारे ही तुहाडे सिख सारे ही तुहाडे सिख कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने चोज वरताया जे बीबी आवे ते पुछण बीबा तू किहदी सिखणी है वह अपने पति का नां लै दे जां इशारा कर दे मैं महाराज इहदी सिखणी सिख आया प्यारा तू किहदा सिख है उन्हें फिर अपने घर वाल इशारा करता कि महाराज मैं इहदा सिख सारे नूं पुछिया कोई एक अद्धा निकलिया कहन लगे सारे अपने अपने सिख ते मेरा सिख कोई भी नहीं निकलिया

जे जे गौ सिंबिया पे मैं करत जगते गए महापुरुष कहू ना पछाना किसे नहीं पहचानी कड़ी महापुरुष कहू ना पहचाना कर्म धर्म को कछु न जाना ना कर्म दस्या चंगा ते ना धर्म दस्या आख्या पूजा मेरी करो बस अवरन की आसा किछ नाई एक आस तरो मन माही कहंदे होर किसे दी आस ना रखो बिना अकाल पुरख तो अवरन की आसा किछ नाई एक आस तरो मन माही आन आच आस उपजित कछ नाई वाकी आस तरो मन माही कोई परत पुराण को कोई परत पुराण काल न सख्त बचाए के फोकट धर्म निदान कोई कुरान की पूजा कर रहा है कोई कुरान नु पढ़ रहा है हजूर कहते दोवे धर्म फोकट ने और इन्होंने अंत वेले साथ नहीं देना काल न सख्त बचाए के फोकट धर्म निदान कई कोट मिल परत कुराना बाचत किते पुराण आ जाना अंतकाल कोई कामना आवा दाव काल काहू ना बचावा

को तुम पाई अंतकाल जो हुए सहाई फोकट धर्म लखो कर परम इन खाली समझो फोकट धर्म।

फिर करो भाई पूजा, फिर करोड़ रुपया इतने वार दिता जाए ना तो आ जरा सुख है उन्होंने नहीं लभ सकता जरा तुम्हू प्राप्त हो गया। आओ पे शुक्र आके धनवाद करिए, गुण गाइए, साडा आया हुआ सफला हो जाए।

पाट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक वरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए, ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा। जब लो नहीं भाग लिलार उदे, तब लो परम ते फिरते बोताए। मथुरा कहिंदा है पट के जब तक साढ़े भाग नहीं समझागे असी संसार विच विचर रहे सी, लेकिन कलयुग दे विच आके सानू जदों गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन होए ते सचमुच फिर उस हरी विच और गुरु अर्जन विच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप, पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज, और जिस गुरु नानक दी उस्तत गावे जनकाद जुगाद जुगेसर हर रस पूरन सर्व कला, गावे सनकाद साध सिदादक मुन जन गावे अचल छला, गावे गुण तोम अटल मंडलोए, भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानी। उस गुरु नानक दे गुण जदों राजे जिनक दा दरबार लग्या सी और उस दरबार विच वड्डे वड्डे रिखी महापुरख तपस्वी जोगी आके राजे जिनक दे चरणा दी धूड़ लै रहे सन, क्योंकि भाई गुरदास जी कहिंदे ने भगत वड्डा राजा जिनक है गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक जिसने बड़ी तपस्या की, और भगत वड्डा क्यों गिणिया गया है, क्योंकि राजे जनक ने राज विच रह के अपने आप नू माया तो निर्लेप रखी है। साथ संगत बोलो श्री ते भाई गुरदास जी कहिंदे ने इस वास्ते राजा जनक वड्डा है। ते एक वरां दा जिक्र, राजा जनक देव लोक नूं गया, देवते भी लोचदे हन कि कोई जपण वाला साडी पुरियां विच चरण पावे। जिस वेले राजे जनक नूं देव लै के देवते लै के अपनी पुरियां विच जा रहे सन, ते रस्ते विच बड़े रोण दी कुरलाउण दी आवाज आई। राजे जनक ने पुछया ए कौन रो रहे हन, तां देवतियां ने दस्या महाराज ए नरक हन जिथे पए होए जीव अपने कर्मां दे अनुसार भोग भोगदे हन, क्योंकि इन्हां जीआं ने जाके संसार ते नाम नहीं जपिया, भगती नहीं कीती, इस वास्ते भगती ना करन करके इन्हां ने अपना मनुखा जन्म जिहड़ा हीरे लालां तों भी महंगा सी, जिहड़ा स्वास हीरे लालां तों भी महंगे सन, इन्हां ने मिट्टी विच रोल दिते। ताई आखिया बंदगी ना कीती आ हीरा जन्म पा के, जे तेनू मनुखा जन्म वाहिगुरु ने दिता है और तू बंदगी नहीं कीती तां तू अपने मनुखा जन्म नू कौडियां दे बदले वेच छड्डिया, उस स्वासां नू कौडियां दे बदले वेच छड्डिया। ताई आखिया

राजाश्रम इतनी जानी तेरी, तेरे संतन की ओंचेरी, हसो जाए सोवत आवे, सोवत जाए सो हसे, वसो होए होए सो उजर, उजड़ होए सो वसे, जलते थल कर थलते कुवे, कुपते मेर करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे, भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी, खल मूर्ख

मैं अनजान हाँ, मैनू तैरना नहीं आंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते।

रेजी अन लजलाज तो इनाई हर तज कत काहू के जाई जाको ठाकुर ऊंचा होई सोजन पर घर जात ना सोई सो साहिब रया भरपूर सदा संग नाही प्रभु दूर कवला चरण सरन है जाके कह जन का नाही घर ताके सब कोई कहे जास की बाता सो समरथ निज पद है दाता कहत

ऐसा हर सेविए नित ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित ध्याइए।

जे ताहर ने फल सब खाल गवास मेरे मन हर ऊपर की जे भरवासा जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी हर अपनी पैज रखे जनदासा जे अपनी बिरथा कहो अवरा पे ता आगे अपनी बिरथा

0: सिकंदर
1: को हर समान नहीं राजा ए तू पद सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा तेरो जन होए सो एकत डोले तीन भवन पर छा जा हाथ

हे शब्द धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज शांति दे पुंज बाणी दे बोहित

अंदर क्रोध दी अगन पड़क रही है। इन्हों दे अंदर नफरत द्वेष भावना दी अगन पड़क रही है, जो इन्हों मजबूर कर दी है कि ए जुलम करन। ए सोच रहे ने कि मैं भी इस तपस दा प्रभावित हो जावा, इस नाल मैनू भी कुछ प्रभाव पवे, पर मेरे गुरु ने, मेरे परमेश्वर ने जो मेरे अंदर एक नाम दा, जो सारिया शीतलतावां दा एक सोमा है, वो ऐसा अमृत नाम बख्शिश कीता है कि ए तपदे होए कड़ाहे, तपदे होए हिरदे उस नाम दी शीतलता नू प्राप्त करके शांत हो जांदे। पर ए शीतलता, नाम दी शीतलता उन्हां नू प्राप्त हुंदी है जिन्हां दे भाग चंगे होवन, जिन्हां दे श्रेष्ठ उत्तम भाग होवन। ते हरी नाम दी शीतलता उन्हां नू प्राप्त हुंदी है, वरना मनुख जबान तो ते जब जरूर जपदा उस परमेश्वर दा नाम, पर जे अंदर क्रोध दी अग्नि होवे ओ जपे दा कोई फायदा नहीं। जे अंदर लोभ दी लालसा होवे, जे अंदर नफरत होवे, द्वेष भावना होवे, उस रसना तो जपे दा कोई फायदा नहीं। तो हजूर गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सारे संसार नू एक शांति दा उपदेश दिता है। ए क्रोध दी अग्नि बुझ सकती है जे नाम दा शीतल अमृत ओ सरोवर ओ सोमा हृदय

जिथे आप जी ने सतगुरु जी के कई चमत्कार देखे हैं, उथे सब तो वड्डा चमत्कार शब्द है, एदे विच कला है। वाजे पंज शब्द तद घर सवागे, घर सवागे शब्द वाजे कला जद गिरधारिया। उस कला नू होर प्रगट करन वास्ते सतगुरु जी ने शब्द नू रागां विच उचारण किया है। मेरा दिल करदा है इस वक्त सारे दुनिया

अवगण बड़ी तिखी छुरी मनुख दे दैवी गुणा नूं कट के नकारा करके सुट दिंदी। मनुख मनुख ना रह के पशु हो जांदा। औगणे आरा मनुख पशु है। गुणवान प्रभु अपने प्यारियां दे हिरदे च गुण वसा के तोरदा है। औगणा दे वस पै के बंदा थले गिर जांदा, अपनी हस्ती तो नीवा हो जांदा। अवगुण मनुख दे गुणा नूं कटदे ने, दी हस्ती नूं कटदे ने, ते सतगुरु अवगुणा नूं कटदे ने। सतगुरु दे नजदीक होइए, सतगुरु दे चरणी लगीए ते अवगुण कटे जांदे ने। अवगुण कटे जांदे ने, गुण निसरदे ने। जिस सतगुरु पासों प्रभु नाल जुड़न दा उपदेश मिलदा है, जिस सतगुरु पासों हिरदे च नाम वसाउण दी जाच आउंदी, जिस सतगुरु ने आपां हुणे तक पढ़ रहे सां एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर ना मूआ, ऐसा जीवन बख्शिया है जो टिकिया रहन वाला अटल जीवन है। ऐसा जीवन बख्शिया है जिहड़ा मौत तो उपर है। और आप देखते हो मौत आउंदी है ते बंदे दी कहानी मुक जांदी, मनुखी जीवन दी कहानी मुक जांदी। लेकिन एक गुरु का सिख है जिदी जिंदगी मौत कबूलन तो बाद शुरू होंदी। पहला मरण कबूल जीवन की छड आस, औगण मर जांदे, नकारा मनुख मर जांदा। एक सच्चे मनुख दा जन्म हुंदा, गुणा दा जन्म हुंदा, दैवी गुणा नूं लै के मनुख उपर नूं उठदा, गुरु नूं प्यारा लगदा, गुरु नूं पाउंदा है, संसार नूं चंगा लगदा। और मेरे साहब ने ऐसी बख्शिश कीती है सानू, जिवें महाराज ने पावन बाणी च किया है ना, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा सा बिद तुम हर जानो आपे। तैनू पता है साडा की हाल हुंदा सी, तेरे चरनी लगन तो पहला साड़ी की अवस्था सी। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तेरे चरनी लाके असी कीड़े बादशाह हो गए, सरदार हो गए, मान वाले हो गए। रुलते फिरते कीड़े सत्कार योग हो, और ये सत्कार इत्थे भी मिलता है, तेरी दरगाह विच भी मिलता है। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले है चूके सब सोग संतापे। जिंदगी विचों संताप निकल गए, चैन आ गया, सुख आ गया जीवन में, कायर हुंदे सां बहादुर बना दिता, नफरत नाल भरे सां प्यार नाल भर दिता, आलसी हुंदे सां उद्यमी बना दिता, बुरा चितवदे सां सेवादार बना दिता, परोपकारी बना दिता। और जिसने औगण कट के गुण समझा के सानू इन्ने योग कीता है, अमृत दियां दातां दे के, नाम दियां दातां दे के, बाणी दी सौगात बख्श के, जीवन दा सुचज बख्शिया। साहब कहंदे ने जिन जग जीवन उपदेशिया तिस गुर को हों सदा घुमाया, मैं वारने जावां उस सतगुरु तों, तिस गुर को हों खनिए मैं टोटे टोटे हो जावां, बलिहारने जावां उस तों। जिन मधुसूदन हर नाम सुनाया, जिसने वाहिगुरु का नाम मेरे हिरदे विच सुना के वसाया, तिस गुर को हों वारने जिन होमे बिख सब रोग गवाया, होमे वर्गे महारोग मेरे जीवन विचों कटे ने जिसने, तिस सतगुर को वड पुन है उहदा कोट आन कोट धनवाद, उहने बड़ा पुन कीता मेरे ते। जिन अवगुण कट गुणी समझाया, सदा उस सतगुरु नूं चेते रखना गुरसिख दा फर्ज है, उहदा परउपकार साडे सिर ते, उहदी बख्शिश साडे सिर ते करजा है। जिसने हमरे मस्तक दाग दगाना, हम कर्ज गुरु बहु सांडे, साडे मथे ते अपने अपने प्यार दा दाग ला के, अपने प्यार दी निशानी ला के, अपना बना के अपना रूप दिता है, अपना सुचज बख्शिया है, अपना प्यार बख्शिया है,
ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਾਂ, ਹਮ ਕਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਬਸਾਣੇ।

जरा भी डुलिया तेरा सिर ला देंगे। उपदेश तेन मुड़ के देंगे, उधर होके आ नगर वेखे आ फिर तेन दसने। थाली तेल की चुके तुर पिया, तुरया गया बाजारा गलिया विच, सारा नगर फिरके आ गया। दो बंदे तलवारा नंगिया लैके मगर तुरे आ रहे। ओदा ध्यान एक ता थाली विच ते एक थले राह दे ठेडियां ते रोड़ियां वल कि किधरे पैर थिरक ना जावे, तेल डुल ना, जे तेल डुल गया ते ला देणगे सिर। सारा नगर फेर के लै आंदा, लिया के थाली रख दित्ती, बड़ा खुश है। कहन लगा महाराज वेख लो एक कतरा नहीं गिरिया किधरे। महाराज जनक कहन लगे चंगा कीता, तेल नहीं डिगण दिता, हुण तू ए दस नगर दा की वेखिया। सिर नीवा करके कहन लगा महाराज नगर की वेखना सी, तेल दा ध्यान रहा या राह दे रोड़िया वटिया ते खड्डिया दा ध्यान रहा। तेल ते राह दे ध्यान विच नगर नहीं वेख्या गया, फिर कदे वेख लवांगे। महाराज जनक कहन लगे सारा नगर फिर आया, ध्यान तेरा तेल विच रहा ते राह विच रहा, बस एनी गल पल्ले बन लै, मेरा उपदेश इन्ना ही है। कि महाराज की? महाराज जनक कहन लगे बस तेरे हिरदे की थाली विच प्रभु सिमरन दा तेल है, ओनू नहीं डिगण देना, ध्यान मेरे दसे राह ते रखना। जो भगती का मार्ग मैं तेन दसन लगा, ध्यान ओदे विच रखी, ओदे च डिगना नहीं, डोलना नहीं, पैर ना थिड़के, ते प्रभु सिमरन हिरदे विचों एक पल वास्ते भी इधर उधर ना हो। जिन्हां नू जीवन की बड़ी सार है, जिन्हां नू जीवन के स्वासा का मुल पता है, वो कबीर कहंदे ने ना, जब लग तागा बाहों बेही तब लग बिसरे राम सनेही। बड़ा किसी ने पूछिया कबीर जी राम कदों चेते करदे हो, उसका कपड़ा बुनी जांदे, राम नू कदों चेते करदे हो। वो कहंदे ने चेते करन दी गल नहीं, इत्थे ते भुलण दा मसला बणिया। कहदा? कहिंदा जिसले मैं बेड़ी च नलकी पाउणा ते धागा चढ़ाउण लगना, उस वेले सुराख दे अगे धागा रख के जिस सिलेंडर नू खिचना, मेरा राम कहना रुक जांदा। हर एक नलकी बदलण वेले मेरे कोलों राम कहना, एक वारी एक श्वास मेरा राम कहण तों मिरथा चला जांदा। ए जिंदे लोग ए बैठे ने कपड़ा बुन रहे ने, लेकिन पसारा कपड़े विच नहीं, मन दा पसारा कपड़े च नहीं, मन दा ध्यान सारा प्रभु सिमरन च लगा। महाराज जनक राज कर रहे ने, लेकिन ध्यान प्रभु विच है। सुखदेव नूं कहिंदे ने जिवें थाली विच ध्यान रहा है, रस्ते विच ध्यान रहा है, इसे तरह हिरदे घर विच बिठा के प्रभु दी याद ध्यान उत्थे रखना। रहना संसार च, फिरना संसार विच है, ध्यान प्रभु सिमरन च रखना। बस इन्नी कु जुगत आ जावे, फिर इस संसार की चरागाह विच आए हैं, इस धर्मशाल विच धर्म कमाउंदे तुर चलांगे। पसरना नहीं इत्थे, उलझना नहीं इत्थे, बल्कि महाराज पाशा ऐसा भी कहंदे ने कि इस सारी खेड नूं कच्ची करके जाणी। साहिब गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह कहंदे ने वेखी इस संसार की खेड नूं किते सच्ची जाण के ते सच्चे वाहिगुरु तों टुट्टिया ना रह जाई। साहिब कहंदे ने जग रचना

बिन बाजे कैसो नृत्यकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जेवा कहा को बकता, बिन श्रवना कहा को सुनता। बिन नेत्रा कहा को देखे, नाम बिना नर कहीं न लेखे। बिन विद्या कहा को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित। बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी। बिन बस पंच

तुम्हारे। नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे, छापर बांध सवारे तृण को द्वारे पावक जारे। कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे, मोढ़े वस्त्र का

कबहू ना डरो। ए मालिक सानू एहो जिहा वर दे शुभ कमां तों पिछे ना हटिए, जुलम नूं देख के कदम पछा ना खिचिए, साडी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतियां सिंघा ने, मुगल फौजां ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंघा ने बार बार अपनियां जानां दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंघा ने एडियां कुरबानियां कीतियां, उथे मामा ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दियां नीहां नूं पक्कियां कीता। फ्रक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंघा नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है। इहदे सिपाही जांदे ने, दिन भर सिंघा नूं टोलदे रहिंदे ने, शाम तक पकड़ के लै आंदे ने, ते इह जुलमी सामने खलो के कोह कोह के मारदा है। अज जिहड़े सिंघ पकड़ के लियांदे ने ना, इन्हां दे विच 18 साल दा नौजवान, बुढ़ी मां दा इको इक सहारा। जदों मां नूं पता लगा मेरे पुत्र नूं पकड़ लिया है, पापी राजा जुलमी राजा सिंघां ते कहर टांदा है, मां दा दर्द उठिया, रहा ना गया, राजे दे दरबार विच गई। मेरा पुत्र सिंह नहीं, तेरे सिपाही उनू भुलेखे नाल लै आए ने। बई ठीक है, जे तेरा पुत्र कह देवे मैं सिंह नहीं, ते असी उनू छड़ देवांगे। केड़ा है ओ सामने बंधिया होया है। सिपाही लेके आए, असी तेनू छड़ रहे हां, सानू पता लगा है कि तू सिंह नहीं है। अज गुरु दा प्यारा कूक कूक के बोलिया, कौन कहिंदा मैं सिंह नहीं, मेरी दस्तार वल तक, मेरे चेहरे वल तक तेनू मैं सिंह नहीं लगदा, कौन कहिंदा है। ओ सामने तेरी अम्मा खलोती है, वो कहती है नहीं नहीं वो मेरी मां नहीं है। अब तक लो सिखी किन्नी प्यारी है सिख नूं, वो मेरी मां नहीं, हो सकता है उदे पुत्र दी शक्ल मेरे नाल मिलदी होवे, पर वो सिंह दी मां नहीं हो सकती, क्योंकि सिंघां दियां मामां इंज सिदकों डोलदियां नहीं होंदियां। मां नस के आई, पुत्र कह दे एक बारी मैं सिंह नहीं, क्यों जान गुआंदा है, ये तेनू छड़ देणगे। अज गुरु दा सिंह जोश विच पार आया, याद कर ठंडे बुरज दी कहानी, सरहंद दा साका, अजे बहुते दिन नहीं होए किवें माता गुजरी ने अपने बच्चियां नूं सेरे बन के मौत वल भेजिया सी, भुल गई है, याद कर। सिंघां दियां मामां कदों सिदकों डोलदियां ने, ओ ते आखदियां ने जा पुत्रा, अज गोविंद सिंह नूं तेरे सिर दी लोड़ है, मेरी कुख सफली होवेगी। पुत्र दियां एहो जिहियां गल्लां सुन के मां दा सिदक जाग उठिया, ऐ कलगियां वालिया, इस हिंदुस्तान दी धरती खातर तू अपना पिता वार दिता, बुढ़ी मां वार दिती, चारे लाल वार दिते, सारा सरवंश वार दिता, ते मैं अपना एक पुत्र लकोई जांदी हां। मां दा सिदक जाग उठिया, आप मुहारे ही मां दे मुख विचों कलगी तरदे जकारे निकल रहे ने।

कुमार जी श्री दर्शन कुमार जी वालों पेश की गई है। आप समूह संगत नू खालसा जी दे 300 साला

0: तेरा था भी सोना, तेरा रूप भी सोना, तेरे भगत भी सोना। सुंदर स्वामी धाम मालक दा दर सोना है, एक गल दा ख्याल रखना मालक दा दर केड़ा है। सो दर के हा, सो कर के हा, जित दर वसे कवन दर कही है, दरा भीतर दर कवन लहे। ओ केड़ा दर है जिथे भी साध जन बैठ के उनु चेते करदे ने उथे।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.